ये दुनिया एक मेला है जहाँ इंसान मिलते हैं, गरीबों के दुआओं से मगर भगवान मिलते हैं।